0: 99.4 रेडियो था संचार स्टूडियो टाइम
1: इट्स 9 AM हिजो जस्तो आज छैन आज जस्तो भोलि रहने छैन समय गतिशील छ जब समय बोल्न थाल्छ संसार सुन्न थाल्छ यो हो था संचार नेटवर्क समयको आवाज

ट्वेल्थ का आपसे हुआ चार हजार बुढ़ा ले टोन्ने आले तन खामा ये पाली बुढ़ा का पेपर राम सही क्या हो।

0: कथा सुनो।
1: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल, संपर्क 9803364060।
2: पीतो सांजी को मोह